Ama tripulani tanım, edinte sakalle sen san. Kavşik sunu, banda ihman. Kurtile kale basalice kule kale. Tume hata kahu jo çaha uvara. Kahitte tap bale roşu hamara. Sur samade karani karahi. Kahine cenabahi ap. Nityaman ran payedi. Kayar karahi pralap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल ही प्रशंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुम ही डराई सुनि।